0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজী বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए

0: रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. He said that this is a defining period in India's journey where aspirations are reaching new heights. Mr. Modi said that at the G7's meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. Prime Minister said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Earlier, Modi was welcomed with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. The Indian community in France gathered in large numbers chanting slogans of Modi Modi and Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said, "This visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes." French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujiba Utkushir, we have ka Nice, Evian, or Paris. Man ise sadve daure kiliye twagat karke. France or Barat ki dosti amarai. I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं।

0: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की

0: दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
0: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैनी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस, रायरंगपुर पुलिस जिले का भी

0: आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला। तत्काल कदम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय

0: ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি, 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলীন নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक

63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधूरी घाट औनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रूपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रूपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खुले में शौच न करें, विज्ञान सम्मत शौचालय का व्यवहार करें, खाने से पहले और शौच के बाद आप अपने दोनों हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे दिल है कि मानता नहीं फिल्म का एक गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनिए गीत अनुराधा पौडवाल से।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल शनिवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम मजलिसे कवाली, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुंजन और 1:40 का समय है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का।

दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम नजराना का। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल के कार्यक्रमों की जानकारी। आइए बढ़ते हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस भक्ति गीत से। फिल्म है चित्रलेखा।

फौजी भाइयों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये भक्ति गीत।

भक्ति में ही शक्ति है, यही शक्ति हमें हर मुश्किलों से निजात दिलाती है। जी हाँ फौजी भाइयों, अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है अवतार फिल्म से, आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

0: इन्हीं भक्ति गीतों के साथ फौजी भाइयों, बंदगी के गीत और भजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फौजी भाइयों, इस समय दिन के 1:05 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects.

फौजी भाई, इस वक्त आपके साथ हूं मैं गुना प्रभा बोरा लेकर कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज करेंगे लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है लिबास।

फौजी भाइयों, सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत इन गीतों को इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर और डिब्रूगढ़ केंद्रों से। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज में दस्तक फिल्म का ये गीत।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों पेशे खिदमत है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का आगाज करेंगे गुलजार के लिखे इस गजल से, जिसे अपनी आवाज से सजाया है जगजीत सिंह ने।

दिल में अब दर्दे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी मेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। साहिर भोपाली का लिखा यह कलाम पेश कर रहे हैं लता मंगेशकर।

0: Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय

0: कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहिरा तथा हो जहिरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178289802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
3: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर

0: पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

नहीं है। अगला गीत सुनिए आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, फिल्म है मंजिल मंजिल।

दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे एफएम रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यहीं होता है समापन। कल 12:10 पर आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। रेडियो डॉक्टर में हम आपके लिए विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े विशेषज्ञ यानी डॉक्टर को इस प्रोग्राम में लाते हैं, जहां आप उनसे सीधा संपर्क करें और अपनी समस्या उनसे शेयर करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: हमारा जो आज का विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन, यानी कि महिलाओं में अवसाद और चिंता की समस्या जो है, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम आपके प्रश्नों का और आपके सवालों का, आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे पलक मुचल की आवाज में। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, जिन लोगों ने देर से रेडियो खोला है, कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता, और अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन। हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो मनोचिकित्सक हैं दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, मैसेजेस भी आने लगे हैं, कुछ ऐसा ही विषय है आज का। लेकिन अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं नवीन प्रीत विहार से, तो उनका प्रश्न हम सुन लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी नवीन जी, डॉक्टर साहब आपको सुन सकते हैं और आप अपना प्रश्न पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, नवीन बोल रहा हूँ मैं।
2: हाँ बोलिए नवीन जी।
1: अपनी मदर को लेके आपसे कुछ बात करना चाह रहा था।
2: हाँ जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब, मेरी मदर को काफी टाइम से 5-6 ईयर से कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लाइक कभी उन्हें किसके बैक पेन होता है, कभी उनके हार्ट में कुछ इशू हो जाता है, कभी उनके हेडेक होने लग जाता है। तो बहुत मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, स्पाइनल इंजरी से कराया बैक का, और आफ्टर दैट हार्ट के लिए भी उनका ट्रीटमेंट चला। तो लास्ट मेरे को बाहर वाले डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इनको एंजाइना अटैक होते हैं अगेन एंड अगेन। तो अभी उनको एज पर टाइम तो पैक्टिल वगैरह हम लोग दे देते हैं, बट उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए
2: डॉक्टर? नहीं, उनको डॉक्टर ने क्या बोला, एंजाइना अटैक्स होते हैं कि एंग्जाइटी अटैक्स?
0: एंग्जाइटी अटैक,
1: अटैक होते हैं जी, बिल्कुल।
2: अगर उन्होंने एंजाइना बोला है तो एंजाइना तो बेसिकली हार्ट का इशू होता है।
1: ओके okay.
2: तो अगर एंजाइना है तो उसको आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एंग्जाइटी इश्यूज देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 4 या 5 साल से उनको दिक्कत है, कई जगह दिखाया
1: जी।
2: तो अगर एंग्जाइटी की उनको समस्या है, जैसे घबराहट होती है, छोटी बातों को लेकर वो चिंता करती है, उनको नींद नहीं आती है ना, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स, एक डर के आभास में रहती है कुछ बुरा ना हो जाए, अगर ऐसे इश्यूज उनको हैं तो उनको आप किसी भी एक मनोचिकित्सक से दिखाइए, क्योंकि 5-6 साल से अगर इश्यूज हैं तो फोन पे उसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
0: बिल्कुल,
2: मनोचिकित्सक को आप दिखा के आपके उसमें, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, एक बार उनसे कंसल्ट जरूर करिए।
1: ओके डॉक्टर साहब,
0: थैंक यू नवीन जी। डॉक्टर साहब, हमें जो दूर दराज हमारे लिसनर सुन रहे हैं, जो महिलाएं हमें सुन रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनको ये बताएं कि एंग्जाइटी ये जो है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, क्या है एंग्जाइटी, क्या वो लक्षण है जिससे कोई महिला ये जान पाए कि शी इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी,
2: है ना। देखिए, एंग्जाइटी या साधारण

0: दूसरों शब्दों में हम कहें घबराहट, ठीक है, या चिंता। जब भी हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होती है, तो जबकि उस चीज का कोई वास्तविक आधार नहीं होता,
1: अच्छा,
0: तो इस चीज को हम एंग्जाइटी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी घबराहट हम कहें हमारे लक्ष्य को प्राप्ति और सफलता के लिए जरूरी है।
1: जी,
0: अगर हमको एग्जाम के प्रति एंग्जाइटी नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे नंबर लाएंगे। पर अगर यही सारी चिंताएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जरूरत से ज्यादा हो जाएं, ज्यादा समय तक रहें, तो इसकी वजह से हमारे हमारे जो एक पारिवारिक जीवन पे, हमारे सामाजिक जीवन पे, हमारे आर्थिक जीवन पे इसके दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं, तब ये एक चिंता का रोग या एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है।
1: ओके, तो क्या एंग्जाइटी में गुस्सा भी आता है?
0: देखिए, एंग्जाइटी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सबसे कॉमन लक्षण जो हम कहते हैं कि घबराहट होना, दिल का तेजी से धड़कना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये जिसे हम कहते हैं चोकिंग सेंसेशन होनी, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, सर में दर्द होना, हाथ पैरों में कहते मसल एक्स होना, मसल हमेशा स्टिफ रहती है।
1: ओके,
0: तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के। जरूरी नहीं कि हर सिम्टम हर किसी को हो, पर अक्सर अगर ये सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति को दो हफ्ते या उससे ज्यादा या कुछ महीने तक रहते हैं तो हम कहते हैं उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। देखिए, जिस तरह से हम कहें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उदासीनता,
1: जी,
0: ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी घबराहट भी होगी, कभी ना कभी उदासीनता भी होगी।
1: जी जी,
0: तो ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं। पर अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए,
1: जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या,
0: जरूरत से ज्यादा
1: का दिन, 15 दिन,
0: हाँ, तो देखिए, जैसे उदासीनता या डिप्रेशन, अवसाद के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स दो हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और उससे हमारे सामाजिक और नॉर्मल जीवन में असर डालने लगता है तो हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का रोग है। नॉर्मली मान लीजिए हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुरूप हमारे रिजल्ट ना आए, तो एक आध दिन हर किसी को थोड़ा सा उदासीनता होता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार वो नॉर्मल हो जाता है। पर अगर ये सिम्टम्स डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमेशा उदासी रहना, किसी भी चीज में जिसको व्यक्ति का पहले बहुत मन करता था, जिस चीज में इंटरेस्ट रहता था, अब उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता, भूख नहीं लगती है, चीजों में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, एक शारीरिक कमजोरी, एक थकान सी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी इतने नेगेटिव कि मरने तक के विचार आने, चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, चीजों में फोकस नहीं कर पाना, नींद ना आना या अत्यधिक नींद, ज्यादा नींद आना, अगर ये है ना, हमेशा जिसम कहते हैं शरीर में दर्द, सर में दर्द, पेट फूलना, और ये सारे सिम्टम्स दो हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं, इनमें से कोई चार सिम्टम्स, तब हम कह सकते हैं कि उसको उदासी का रोग या अवसाद का रोग हो सकता है।
1: ओके, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है SS गुप्ता जी का रांची से, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मेनोपॉज में डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों होते हैं?
0: देखिए, ऐसा तो नहीं कि मेनोपॉज में एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक फीमेल में मेनोपॉज के दौरान इनके होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर फीमेल को ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा जब हार्मोन लेवल थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं तो काफी फीमेल्स में चिड़चिड़ापन, उदासी या एंग्जाइटी के सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, और काफी केसेस में ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में जब जरूरत से ज्यादा होते हैं तो एक मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ सकती है।
1: एक और मैसेज आया है प्रकाश जी का, दिल्ली से। प्रकाश जी, आपने जो मैसेज हमें लिखकर भेजा है कि यू वांट टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, तो अभी अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, एंड आई एम श्योर कि आप जरूर सुन पाए होंगे कि क्या है एंजाइटी के लक्षण। तो एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं, आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन, महिलाओं में अवसाद और चिंता या जो घबराहट की बीमारी है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पर यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहब, लिखकर भेजा है कि नाइस प्रोग्राम, ऑफ कोर्स इट इज। हमारे साथ जब स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए होते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए होते हैं। और सरस्वती देवी, 32 साल इनकी उम्र है और ये बांका बिहार से लिखा है। इनकी वाइफ है और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और घबराहट होती है, तो हम क्या करें? सांस, आपने कहा था कि धड़कनें तेज होती हैं या उस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो शायद ये सोच के इन्होंने लिख के भेजा है कि कहीं ये एंग्जायटी या डिप्रेशन के ही लक्षण ना हो।
2: देखिए, सांस लेने में दिक्कत होना और धड़कन तेज होना ये बहुत किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये हार्ट की बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, ये हमको कोई दमे की, अस्थमा की वगैरह के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इन दो लक्षणों पे कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से है। तो बेहतर होगा ये अपने किसी नॉर्मल फिजिशियन को दिखाएं, वो और चेकअप वगैरह कर लेंगे और कोई अगर दिक्कत नहीं है तो ये मनोचिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि माइग्रेन पीड़ितों के डिप्रेशन और एंजाइटी की चपेट में आने की आशंका अधिक होती है, हाउ फार इज इट ट्रू?
2: देखिए, ये एक सच है कि माइग्रेन जो पीड़ित हैं उनको थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन डिप्रेशन और एंग्जाइटी में आने के लिए।
1: ओके।
2: तो इसका कुछ कारण तो माइग्रेन की वजह से भी होता है,
1: सर दर्द रहता है
2: उनकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, कुछ चीजें नहीं कर पाती।

0: है ना। और कुछ कभी कभार कुछ दवाइयां जो खाते हैं माइग्रेन में, उसकी वजह से भी थोड़ी सी वो हो ये हो जाता है। और कई बार माइग्रेन अपने आप में भी कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस कर सकता है ब्रेन में, जिसकी वजह से थोड़े से एज कम्पेयर टू नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा रहता
1: हो सकता है। मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि वेमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन और एंजाइटी, इज इट आल्सो ट्रू?
0: देखिए बेसिकली क्या है कि एक हम ये देखते हैं कि टिल प्यूबर्टी मेल और फीमेल में डिप्रेशन के जो रिस्क फैक्टर्स या जो प्रेवलेंस होती है वो नॉर्मल रहती है, पर प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में रिस्क थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। जे डब्ल्यू एच यू की या जो आंकड़े ये कहते हैं कि नॉर्मली 25% चांसेस रहते हैं एक फीमेल को अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी डिप्रेशन से ग्रसित होने में, यानी हर चार में से एक फीमेल ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल डिप्रेशन उसको गुजर सकती है। और जनरली हम ये देखते हैं कि एज कंपेयर टू मेल्स डिप्रेशन फीमेल्स में दुगना होता है, जो प्रेवलेंस है उसकी डबल होती है एज कंपेयर टू मेल्स इन फीमेल्स।
1: एंड रीजन कारण क्या हो सकता है? मे बी बिकॉज दे आर वर्किंग 24 आवर्स इन द सेंस कि घर और बाहर दफ्तर जो भी है, जरूरी नहीं कि घर का जो माहौल है वो भी बहुत कंजूसिव हो या दफ्तर का जो माहौल हो वो भी बहुत कंजूसिव हो, तो इसका असर उनके जहन पर उनके
0: दिमाग पे। इसके ना बहुत सारे कारण है। पहला जो एक कारण आता है वो एक हार्मोनल इश्यूज है
1: जी,
0: है ना। एक फीमेल को अपनी जिंदगी में जब प्यूबर्टी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: फिर एक पीरियड जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है उसमें उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर जैसे हम कहें चाइल्ड बर्थ एक ऐसा फैक्टर जिसमें चेंजेस आते हैं, और एक जब मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं तो उसमें भी ये चीजें होती है। तो एक बड़ा फैक्टर हार्मोन्स का होता है फीमेल्स में डिप्रेशन होने का। दूसरा जैसे आपने ठीक सही कहा कि एक फीमेल्स को ना जो एक मेल्स के कंपैरेटिवली हम कहें कि थोड़ा सा स्ट्रेसेस से ज्यादा सामना करना पड़ता है, घर पे भी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उससे एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो वर्किंग फीमेल है तो उसको घर भी देखना है और उसको अपने वर्क का भी प्रेशर झेलना है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है एक मेल का और एक फीमेल का, है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनके सोचने की और उसकी क्षमता एक है ना जो इमोशंस को व्यक्त करने की जो वो है वो भी थोड़ा सा अलग होती है। तो
1: कई बार वो अपने इमोशंस को सप्रेस
0: करती है
1: तो वो कहीं ना कहीं तो फिर उसका प्रभाव पड़ता होगा जी।
0: इन चीजों से हम कहते हैं कि फीमेल्स थोड़ा सा ज्यादा प्रोन होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स डिप्रेशन के लिए।
1: ओके, बहरहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल जो कि एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और हम आज बातचीत कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन इस विषय पे। ये एक मैसेज आया है सितेंद्र मिश्रा जी का इमलिया मानपुर सीतापुर से, और लिखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आप परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब हमारी माँ किसी भी तेज आवाज को सहन नहीं कर पाती हैं, क्या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर दिक्कत है आप मानसिक अवसाद की, आप क्या परामर्श देते हैं?
0: देखिए किसी भी तेज आवाज को नहीं सहन कर पाना ये तो बहुत किसी काफी कारणों से हो सकता है ना। तो इसके लिए तो पहले आप एक बार ENT जो विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। कई कई बार कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आवाज तो जिसे हम कहते हैं ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पहले एक बार उनसे चेकअप कराएं, अगर वो कहते हैं सब कुछ ठीक है तो फिर आगे कैसे उनको।
1: डॉक्टर साहब हम अगर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने अभी बात की थी डिप्रेशन और एंग्जायटी दोनों की, तो क्या एंग्जायटी ही आगे बढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है या दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेज्ड इन द प्रिलिमिनरी स्टेज कैन बी टेकन केयर ऑफ?
0: नहीं देखिए ऐसा है कि एंग्जाइटी एक अलग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन एक अलग डिसऑर्डर है। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो प्राइमरीली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, दिल का तेजी से धड़कना, ठीक है, सांस की दिक्कत होना, ठीक है, तो और हाथों का कंपन, हाथों में पसीना आना, एक चीजों की बुरी आशंकाओं को लेके हमेशा परेशान रहना, ऐसा होता है। और डिप्रेशन जो एक वो दूसरा है वो एक जिसम कहते हैं मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर मतलब इसमें आदमी एक जिसम के उदासीनता में चला जाता है, इसको किसी काम में रुचि नहीं रहती, ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसा जरूर हो सकता होता है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी है या जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको साथ साथ एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स जरूर होते हैं, पर अपने आप में ये दोनों एक अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं।
1: ओके यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक. आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ. और एक बार फिर आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन विषय पर. आज
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए.
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे एफएम रेनबो 102.6 MHz पर.
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता यानी डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनीष कांडपाल जो मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि

0: एंजाइटी कितने तरह का होता है?
1: देखिए, ऐसा है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो ये एंजाइटी है, वो कई तरह की बीमारी उसमें हो सकती है। जैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को यह है, तो उसमें वो उसको ना जो जो घबराहट है, जो चिंता है, ये हर किसी चीजों को लेके, जो एक डेली रूटीन की नॉर्मल सी चीजें हैं उनको लेके होती रहती हैं। उनको शरीर में जो हम कहते हैं बॉडी एक्स रहते हैं, सर में दर्द रहता है, उनका वजन गिरने लगता है, छोटी छोटी बातों पर वो घबराने लगती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हाथ में पसीना आना, दिल का धड़कन बढ़ जाना या सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये रहती हैं। जबकि इनका कोई उनसे पूछा जाए तो एक पर्टिकुलर कारण नहीं बता पाती, हाँ इस वजह से परेशान हूं, पर दिन भर लेकिन वो चीजों को लेकर थोड़ा सा घबराहट और चिंता में रहती है। और ये चीजें अगर 6 महीने या उससे ज्यादा रहे तो हम कहते हैं कि उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है।
0: इसका जो इलाज होता है डॉक्टर साहब, कहते हैं ऐसा कि बहुत लंबा इलाज होता है, और अगर बीच में दवाइयां छोड़ दी जाए या डिसकंटिन्यू हो गया तो फिर आपको वहीं से वापस शुरू करना पड़ता है।
1: हाँ, एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, जैसे एक तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो दूसरा एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है, बहुत तेज एंग्जाइटी होती है कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए, और उसके बीच में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको ऐसे रिपीटेड अटैक्स आते हैं जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक्स। तो ये पैनिक डिसऑर्डर हो गया। तीसरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं, वो होता है फोबियाज, है ना। उसमें किसी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर जिसे हम कहें वस्तु से या है ना पर्टिकुलर कार्य में से डर लगता है। तो जब भी वो व्यक्ति उन चीजों को फेस करता है तो उसको उस टाइम पे घबराहट होती है। तो ये भीड़ वाली जगहों से हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से हो सकता है, या बहुत से लोगों को हम कहते हैं किसी जानवर से, हाइट से, है ना। तो ये अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, तो ये होते हैं। और एक चौथी तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे आज की तारीख में WHO ने स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज में कर दिया है, वो होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस व्यक्ति को बहुत ही सीवियर ट्रॉमा सहन करना पड़े, है ना, अपना घर टूट रहा है, वो चीजें हो रही हैं, या कोई सेक्सुअल अब्यूज किसी के साथ हो जाए, तो ऐसे लोगों को वो चीजें, वो इश्यूज बार बार आते रहते हैं, वो हमेशा घबराहट रहते हैं, उसकी इमेजेस आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, उस चीज से वो आगे नहीं निकल पाता, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
0: एक ट्रॉमा होने के बाद जो समय होता है, ओके।
1: तो ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था इसके इलाज को लेके, देखिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन को लेके है ना, ये एक बड़ी भ्रांति है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इलाज, दूसरी एक भ्रांति है कि सिर्फ दवा ही खानी पड़ेगी। देखिए इसका इलाज दो तरह से होता है, एक तो हम जिसे हम कहते हैं बातचीत के जरिए या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, और दूसरा होता है दवाइयों के जरिए, ठीक है। ज्यादातर केसेस में दवाई बहुत लंबी नहीं चलती और ये बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको दवाइयां आजीवन खानी पड़ेंगी या दवाई खा के अब उसको आपकी उसकी लत लग जाएगी, पर हाँ ये जरूर है कि इसका पूरा कोर्स जरूर कराना होता है। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो उस बीमारी के दोबारा लौटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
0: और कहते हैं कि वहीं से फिर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 6 महीने ट्रीटमेंट कराई है और अभी ट्रीटमेंट और चलना था, और मान लीजिए वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट था, तो वो फिर अगेन वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट होगा?
1: नहीं, ये ज्यादातर केस में ऐसा तो नहीं होता। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा है किसी ने डिप्रेशन का इलाज उचित चल रहा है, उसको पूरा असर नहीं आ रहा, पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसने फिर दवा बंद कर दी और दवा बंद करके ये बीमारी फिर दोबारा उसी रूप में आ गई, तो हाँ उसको फिर पूरा इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, पेशेंट ठीक हो गया है, बहुत हल्के सिम्टम्स हैं, तो फिर पूरा नहीं, जितना बचा है फिर उतना ही इलाज से बात बन जाएगी।
0: ओके, अभी आपने घबराहट की बात की थी, तो एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है, कृष्णा देवी, उन्होंने अपना नाम लिखा है और उनकी उम्र 40 साल है। लिखती है, मेरे आधे सिर में दर्द रहता है और उसकी वजह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है। मैंने दवाई भी कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। हम गांव के रहने वाले हैं तो वहां पर मनोचिकित्सक कहाँ मिलेंगे? Oh God, this is can be a problem.
1: हाँ देखिए, हमारे देश में ना थोड़ा सा जो मनोचिकित्सक नॉर्मल डॉक्टर्स की जो विलेजेस में पेनिट्रेशन उतनी नहीं है, लेकिन जो ये चीज बता रहे हैं कि आधे सर में दर्द रहता है एक बार इनको या तो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ये माइग्रेन या वो दिक्कत ज्यादा लग रही है।
0: ओके ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एंग्जायटी एंड डिप्रेशन इन विमेन इस विषय पर डॉक्टर मनीष कांडपाल से। इस वक्त स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की अगर बात करें, ये तो हम एंग्जायटी की बात कर रहे थे, क्या कभी जैसे हमने अभी आपने कहा कि हाँ महिलाओं में कहीं ज्यादा मतलब दोगुना ये प्रॉब्लम पाया जाता है, तो कोई प्रिलिमिनरी स्टेज ऐसा हो जिसका ख्याल रखा जाए या कुछ? सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल के लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, बट देयर आर टाइम्स के उतना वक्त नहीं होता बड़े शहरों में, और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम शायद बड़े शहरों में ज्यादा है, आप सही इंसान है बताने के लिए, इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेसेस जहां पे आपको बहुत सारा वक्त रास्ते में नहीं देना होता कहीं पहुंचने के लिए। लोग एनसीआर में रहते हैं, वहां से ऑफिस आते हैं अपने, और वर्कलोड होता है महिलाओं को, दे एट टाइम्स फील दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन, एंड दिस फीलिंग इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी गुड, यू नो, लूजिंग ऑन थिंग्स, तो ये सब का भी असर पड़ता है। तो क्या किया जाना चाहिए, यू नो, लाइक लाइफस्टाइल की मैं बात करूं या चीजों को कैसे एक्सेप्ट करने की क्षमता जो होती है कि आप उसको मान लें, स्वीकार कर लें, लेकिन जब आप इसको मान लेते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, तो कहीं से वो हारने की एक संभावना या सोच जो है वो आपके ऊपर तारी होने लगती है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन।
1: देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बड़े शहरों और गांवों की बात या छोटे शहरों को लेकर, देखिए हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में डिप्रेशन डायग्नोज ज्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है और वो डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा ज्यादा आती हैं। देखिए, तनाव बड़े शहरों में अपने अलग स्ट्रेसर्स हैं, जैसे आपने कहा अलग तरह की चिंताएं, अलग तरह के तनाव में, छोटे शहरों में अलग तरह के तनाव है ना, रोजी रोटी को लेके, लाइट नहीं आ रही है, बहुत अलग इश्यूज हैं जो हमको पता भी नहीं, तो ऐसा कहना तो थोड़ा सा गलत होगा। हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में हाँ डायग्नोसिस थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि लोग थोड़े से अवेयर हैं, फैसिलिटीज हैं,
0: वहाँ परिवार के लोग साथ हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चों को रेज करना है, यू नो, मदर्स गो थ्रू अ गिल्ट कि भाई मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे है।
1: देखिए ये तो है, अब देखिए हर चीज के अपने दूसरा जो आपने बताया कि लाइफस्टाइल में हम क्या करें कि थोड़ा सा हम डिप्रेशन में इस चंगुल में फंसे ही नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज हम ये मान के चले कि जो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि डिप्रेशन हो गया मतलब कि वो आदमी मेंटली वीक है या उसके कैरेक्टर में कोई इश्यूज हैं। देखिए, डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी है, जिस तरह के शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो मानसिक रोग भी एक बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना, इसके जैसे हम कहते हैं एक बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल, इन तीन फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है जब एक किसी को कोई बीमारी होती है।
0: आपने कहा बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल
1: एंड साइकोलॉजिकल।
0: साइकोलॉजिकल,
1: ठीक है। बायोलॉजिकल में बेसिकली उसका जेनेटिक मेकअप, हार्मोनल इश्यूज, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, उनकी कमी के कारण, तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आप गिना रही थी, है ना, कि स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस एट होम, सामाजिक फैक्टर्स, ठीक है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में होते हैं उस आदमी का मेंटल मेकअप कैसा है। हर आदमी को देखिए जिंदगी में कभी ना कभी तनाव आएगा, वो उसकी कोपिंग स्किल्स या उसकी उस तनाव को झेलने की क्षमताएं डिटरमाइन करती है कि वो डिप्रेशन में जाएगा या उनसे उबर जाएगा। जैसे हमने आपने देखा होगा कि एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे फेल हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में, 10 के 10 तो डिप्रेशन में नहीं जाते, है ना, उसमें से कोई इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि इवन सुसाइड तक करने की कोशिश कर लेते हैं, और कुछ उससे कोप अप करके अगले साल अच्छे नंबर लाके उससे भी अच्छे नंबर लाते हैं। तो उस आदमी का जो मेंटल मेकअप है, उस आदमी का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो भी डिटरमाइन करता है कि इसको ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी होगी या नहीं होगी। तो इन तीन चीजों की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से डिटरमाइन होता है कि एक व्यक्ति या महिला को डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग होगा कि नहीं होगा।
0: ओके, यहां पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और वापस जुड़ते हैं अपने लिसनर से।

0: वापस चलते हैं अपने विषय की ओर, जो हमारा आज का विषय है डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन। डॉक्टर साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब ये जानना होगा कि आपने बताया कि इलाज में वक्त लगता है, इलाज होता है इसका, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और ये भी मिथ नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, चाहे महिला तो है ही, बच्चों को भी हो सकता है। और अब ये जानना बहुत जरूरी है आपसे कि इससे बचा कैसे जाए, क्या ऐसा करें जिससे इस तरह की परेशानी किसी को ना हो।
1: हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहले चीज जैसे हम कहते हैं कि एक बार डिप्रेशन हो जाए तो उसको थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में, और वो थोड़ा सा हुआ है जैसे हर चीज में अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम पहले से कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसे ले लें तो उससे डिप्रेशन या एंग्जायटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन चीजें थोड़ा सा कम हो सकती हैं।
0: या आपकी मर्जी के खिलाफ अगर आसपास आपकी चीजें हैं तो उसको सहन शक्ति आपकी ज्यादा हो या आप इग्नोर करने की क्षमता हो।
1: हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले चीज जैसे हम जो हम कहते हैं कि ब्रेन में या हमारे शरीर में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है,
0: खान पान का।
1: तो सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि एक अच्छा खान पान जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक होल न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड है ना, और खाने का भी कोई रूटीन नहीं है, तो वो चीजें आपके मूड को और आपके उसको जरूर असर करती है। तो पहली चीज है खान पान। दूसरी चीज है कि हम देखते हैं कि एक्सरसाइज है ना, तो एक कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट्स हो, जब भी कोई आदमी एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करता है तो उसके ब्रेन में जो उसके फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, पर साथ में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, तो वो थोड़े से माइंड को रिलैक्स और मूड को एलिवेट करते हैं। तीसरी चीज है, आजकल हम जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम कहते हैं नशे की जो सेवन करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, चाहे वो धूम्रपान है, चाहे वो अल्कोहल हो, तो उससे भी हमारे है ना, नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि कोई टेंशन हुई तो आदमी सिगरेट पी ली,
0: थोड़े टाइम लगता है वो कम हो गया,
1: थोड़े टाइम के लिए वो रिलैक्स कर सकता है उसको, बट ओवर द पीरियड टाइम भी उसकी डिप्रेशन की प्रवृत्ति को और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को और बढ़ाएगा। ठीक है, चौथी चीज हम कम है, ये तो चीज होगी हमें नहीं करनी है, फिर चौथी चीज जो है हमें कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो प्राणायाम है, ना उससे इन चीजों में काफी फर्क मिलती है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं गाइडेड इमेजरी वगैरह के, जो आपको उस एप्स के जरिए भी वो आपको गाइड करते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक को आपको कैसे करनी है और कितने समय तक करनी है। ये एक इश्यूज हो गए। उसके अलावा दो चीजें हमने अपनी उसमें देखा है कि देखिए बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जैसे आपने खुद कहा कि हम थोड़े से गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड है ना चीजों को, वो चीजें थोड़ा सा हमको ज्यादा हो गई हैं, तो उसके लिए हमको अपनी लाइफ में जैसे हम कहते हैं अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। ठीक है, जो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा कैरियर है, हमारी फैमिली रिलेशनशिप है, उसको हमें टाइम ज्यादा देना है, फिर बाकी छोटी छोटी जो हमारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम उसको कम देना है। सीधा सा एग्जांपल मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूं कि मान लीजिए एग्जाम पेपर में आपका कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है ना, जो चीजें आपको आती नहीं है आप उसमें पहले शुरुआत में लग जाएंगे, जो चीजें आएंगी आप उसमें भी समय नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में हमको अपनी रिलेशनशिप को, हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे वर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि ये इस फेज ऑफ लाइफ में दिस इज मस्ट मोर इम्पोर्टेंट टू अस, तो हमको उसमें अपने टारगेट सेट करें ताकि जो अनवांटेड, जो इतनी जरूरी नहीं है, अगर वो छूट भी जाए तो इतना कोई इश्यू नहीं होगा। तीसरी चीज हम ये बताते हैं कि अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स, हर की जिंदगी में वो स्ट्रेसर्स अलग अलग होंगे। एक सिंपल सा स्ट्रेस, अगर हमारी कम्यूटेशन बहुत दूर है, माने बहुत दूर से आते हैं, ट्रैफिक में फंसना कई लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी का स्रोत बन जाता है। तो बेसिकली हमको अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उस बेसिस पे हम अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उन चीजों पे बेटर एक्ट कर सकते हैं। चौथी चीज है कि देखिए घंटे हम सबके पास 24
0: ही
1: है ना, तो हमको अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं घंटों में जीनी है, तो हमको अपने को प्रायोरिटाइज करके वो हमको करना है। फिर एक चीज और हम देखते हैं कि अगर हम उन व्यक्तियों के संपर्क में हैं जो हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक आशावादी वो प्रदान करते हैं, अगर उनसे उसमें रहेंगे, हमारा सोशल सर्कल अगर वो रहेगा, तो हम डिप्रेशन या चिंता में जाने के हमारे चांसेस कम होंगे। तो एक हमारा एक अच्छा सोशल सर्कल भी हमको डिप्रेशन से या नेगेटिव थॉट से

0: बचाता है,
1: बचाता है।
0: और एक आखिरी चीज है अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उन भावनाओं को दबाना शुरू करते हैं और हमको खुद ही नहीं पता लगता कि हम दबाते दबाते हमारा वो एक नेचर का पार्ट बन जाती है, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कोई भी हमारी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपकी माँ है, चाहे भाई है, चाहे फ्रेंड है, जिससे हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए।
1: कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू सप्रेस, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने यू नो वोंट बी वेरी यू वोंट फील लाइट एंड मे बी इट एनहांसेस योर प्रॉब्लम फर्दर।
0: देखिए, अगर कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं जिसको आपको लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूं तो थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि वो पेशेंट ना एक डायरी लिखना शुरू कर दे, है ना। जैसे आपकी कोई भी इमोशंस है, कोई भी फीलिंग्स आप नेगेटिव है, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं उसको बताऊंगी तो मेरे बारे में एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं करें। रात को जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, वो एक डायरी में आप चाहे उसको या एक पेज में आप लिख के देख दें, अगले दिन आप सुबह उसको पढ़ें, तो उसमें 50% चीजें तो आप खुद ही रियलाइज करते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और चाहे तो बाद में आप उसको फाड़ के फेंक दें, इससे आपकी जो इमोशंस है वो इस तरह से
1: आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, देखती हूँ कोई लिसनर कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से हमसे जुड़ने के लिए। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, अपना नाम बताएं।
2: मैं सीमा परवीन बात कर रही हूँ, सदरुद्दीन नगर, जिला बिजनौर से।
1: हाँ, क्या सवाल है आपका सीमा?
2: मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है।
1: पढ़ाई करते वक्त सर में दर्द होता है
2: जी?
1: पढ़ने का मन करता है
2: जी?
1: पढ़ाई में मन लगता है, ये भी तो बात है। ये
2: पढ़ने में आपकी साफ आवाज नहीं आ रही।
1: आपको साफ आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। ये कह रही थी कि इनका पढ़ने समय में इनके सर में दर्द होता है।
0: अगर पढ़ने समय में दर्द होता है तो सबसे पहले एक आंखों का एक जांच करानी बहुत जरूरी है। कभी कभार आई साइट अगर वीक हो तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने बताया, अगर मन नहीं करता है, जबरदस्ती कोई पढ़ने पड़ रहा है, तो वो भी
1: बिल्कुल उससे भी सर दर्द हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया कि किस तरह से आपके लाइफ स्टाइल में, आपके खान पान में, आपका खान पान बहुत पे ध्यान देने की जरूरत है। आप हरी सब्जियां खाएं, साग पत्तियां जो होती हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह खाएं, जिसका भी असर आपके जहन पे पड़ता है। एक्सरसाइज करें, आपने कहा कुछ एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, या योग ध्यान करें, तो इन सब चीजों का बहुत पॉजिटिव असर आपके दिमाग पे हो सकता है और आप इस तरफ जाने से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए। एनीथिंग एल्स विच यू वॉन्ट The listeners to know, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को बताया।
0: बस ये है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि उसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, तो उसको देरी ना करें, ये ठीक होने वाली बीमारी है, तो अपने आसपास कोई भी आपको मनोचिकित्सक या काउंसलर है तो उससे कंसल्ट करें, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
1: ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।

अभी आप रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुन रहे थे और आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष कांडपाल, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, और हम बातें कर रहे थे डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन विषय पर।

कार्यक्रम से संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें health@delhi@gmail.com पर लिख सकते हैं अपने मैसेजेस अपने मेल्स हमें

0: भेज सकते हैं इन शब्दों के साथ। मैं राजश्री त्रिवेदी आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एवियाओं में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिनसिन को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हम में से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियाँ नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। ये सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार हैं। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। ये अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं, आप सोशल

मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं, ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है। ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है, काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए, इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद लें। इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं, इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है, इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो, इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही
कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर।

अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

जी आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम अल्फा जन लेकर आपके साथ हूं मैं। और आज अल्फा जन में थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हां, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और मैं आज आपसे मुखातिब हूं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

या मन्नु, अगर आप भी आज फ्राइडे को मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं, वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे संडे भी है, और अगर आज अगर मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आज दो फिल्में रिलीज हुई हैं, कॉकटेल टू और समर्पित फादर्स लव। जी हाँ, ये दो मूवीज हैं, और अगर इनकी रिलीज के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कॉकटेल टूल जो है उसमें मुख्य कलाकार जो हैं शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना है, और यह फिल्म अपने मल्टी स्टारर दिल्ली लॉन्च के कारण काफी चर्चा में है। हालांकि समीक्षकों और शुरुआती जो दर्शक हैं उनकी मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके फीडबैक्स हैं, उनसे फैंस में कुछ रश्मिका मंदाना के जो रटने लहजे में थोड़ी सी निराशा लगी है। और अगर जहां हम बात करें कि समर्पित फादर्स लव जो फिल्म रिलीज हुई है उसके मुख्य कलाकार, उनके मुख्य कलाकार हैं अंकित यादव और निशा अली। यह अत्यंत भावनात्मक और पारिवारिक फिल्म है जो पिता के अपने बच्चों के भविष्य के लिए किए गए खामोश त्याग को दर्शाती है। फिल्म का संगीत और निर्देशन काफी संजीदा है, और हालांकि इससे रफ्तार कुछ जगह पर धीमी सी लगती है, लेकिन अगर आपने सोचा है तो जरूर जाइए और फिल्म देखिए और फिर बताइए कि फिल्म कैसी है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे अल्फा जेन में आप सुन रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन, और अल्फा जैन में आज बात कर रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और अब फ्राइडे की बात हो रही है तो वीकेंड शुरू हो गया है भाई। वीकेंड की बात है तो वीकेंड में क्या प्रोग्राम है, क्या बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घूमने का प्रोग्राम है या फिर मूवी का है? सीक्रेट है ना, सीक्रेट है, बताएंगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन कई हमारे दोस्त होंगे जो घर पर बैठकर रिलैक्स करेंगे, कहेंगे पूरे हफ्ते तो भागा दौड़ी रहती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, ऑफिस की टेंशन होती है, तो आज दो दिन मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो रिलैक्स किया जाए, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आउटिंग किया जाए। तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप कैसा प्रोग्राम बनाते हैं, क्या आपका है प्लान। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे दोस्त स्ट्रेस में हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा, उनके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे, उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। गुफ्तगू कैसे होगी, हम आपके साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को और अपने जो मेंटल पीस को है वो कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो दिमाग को डिटॉक्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई माइंड डिटॉक्स होता क्या है। मानसिक डिटॉक्स का जो मतलब है मन को अशुद्ध, नकारात्मक और विचलित करने वाले विचारों से शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको मानसिक डिटॉक्स कहते हैं। जिस प्रकार से पंचकर्म डिटॉक्स उपचार शरीर को शुद्धियों से मुक्त करता है, उसी प्रकार जो है ना मानसिक डिटॉक्स नकारात्मक जो विचार जो होते हैं हमारे मन में उनको दूर किया जाता है और मन को शुद्ध किया जाता है, ताकि हम जो नेगेटिविटी है ना उसको दूर कर दें, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, मेंटल पीस है वो आ जाए और हम पूरे अगले नेक्स्ट वीक के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएं। और जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं ना, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो कैसे दूर हो, वही हम आज बात करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

जी हाँ, हवा हवाई आकाशवाणी FM रेनबो। हम भी चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेस, आपका टेंशन पूरा हवा हवाई हो जाए और आप पूरे जिंदगी यूं ही हंसते खेलते और यूं ही गुनगुनाते हुए गुजारें, और जितनी भी टेंशन है उसको एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं ना आपके साथ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए कौन कौन से तरीके लोग अपनाते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। और आपको बता दें कि मेंटल पीस और ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन डिटॉक्स जो हैं फॉलो करते हैं और जिसमें स्ट्रेस को कम होता ही है, साथ ही साथ आपको मेंटल पीस भी मिलता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल तनाव और चिंता बहुत ही आम समस्या बन गई है दोस्तों। दिमाग को शांत रखने के लिए लोग कई तरीकों में इस्तेमाल करते हैं और कई देश इसके लिए स्पेशल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, है ना। जैसे काम का दबाव बहुत ज्यादा हो वहां लोग दिमाग को डिटॉक्स यानी मानसिक सफाई के लिए बहुत ज्यादा बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ बेहद असरदार तरीके भी अपनाते हैं। और मेंटल पीस और ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन डिटॉक्स टेक्निक्स भी जो हैं वो अपनाते हैं, जो ना सिर्फ स्ट्रेस को कम करती है मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। तो चलिए आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। एक तो है फॉरेस्ट बाथिंग, जी हाँ, जिसका मतलब है प्रकृति के बीच जाकर सुकून से समय बिताना, यानी जंगल या पार्क में बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ चलना, पेड़ों हवाओं और प्रकृति को महसूस करना। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जंगल की पीस और नेचुरल वातावरण में समय बिताते हैं। रिसर्च के मुताबिक पेड़ों से निकलने वाले नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड दिमाग को शांत करते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स घटाते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं, है ना। ये टेक्निक अपनाकर जरूर देखिएगा, शायद आपको भी लगे कि वाह भाई ये तो पहले पता होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल आपके साथ मैं जो हूं ना बातों का सिलसिला चलता रहेगा और भी आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ऑफिस की टेंशन को आप बस पेंशन लेने के लिए भेज दीजिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज हम कह रहे हैं कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे को आज हम बात कर रहे हैं माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स को करते हैं, माइंड को भी कभी कभी डिटॉक्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस है, पूरे हफ्ते का ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है, उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि माइंड को भी डिटॉक्स किया जाए। बॉडी के डिटॉक्स तो होते ही हैं, लेकिन माइंड को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे मैंने अभी बात की कि फॉरेस्ट बाथिंग होती है, उसके अलावा जेन मेडिटेशन होता है। जी हाँ, जेन मेडिटेशन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा एक मेडिटेशन है, इस पर ज़्यादा तकनीक लगाई जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है आंखें हल्की बंद करके सांस पर फोकस करता है और विचारों को बस आने जाने देता है बिना जजमेंट के। मतलब कि रोज 10-15 मिनट शांत बैठकर किसी भी एक जगह पर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई विचार आए तो उसे बस आते जाते देखें, आंखें नहीं खोलनी, आंखें बस बंद कर कर और अपने सांसों को पकड़े रहना है। और नियमित जेन मेडिटेशन से दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, उसकी पकड़ थोड़ी कम हो जाती है, फोकस बढ़ता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। है ना ये मजेदार तकनीक, तो ट्राई जरूर कीजिएगा जो। और भी एक तकनीक है, वो भी मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
5: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: ये तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ,
4: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
10: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी

0: OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जैन एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम बात कर रहे हैं कि माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। बॉडी को तो डिटॉक्स करते हैं, माइंड को भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है ताकि अच्छे से काम कर सकें और अपना मैक्सिमम आउटपुट काम में लगा सकें और अपने लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। ये बहुत जरूरी है। आज जो हम बात कर रहे थे जी डिटॉक्स में, तो उसमें हमने बात की फॉरेस्ट बाथिंग की, जेन मेडिटेशन की, और अगला जो हमारा पड़ाव है वो है अगर हम नई टेक्निक के अगर इस्तेमाल करें तो नई टेक्निक में हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने व्यवहार को, आदतों को और सोच में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लेके आते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से हमें फ्री करता है, जिसमें मानसिक बोझ नहीं बनता। हर दिन एक छोटी आदत सुधारने का लक्ष्य बनाएं, जैसे 5 मिनट जल्दी उठना, 1 गिलास ज्यादा पानी पीना, 5 मिनट किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, या बड़े बदलाव की कोशिश में अक्सर स्ट्रेस होता है, लेकिन छोटे सुधार से आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग पर हल्का और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो लाइफ में जितना स्ट्रेस आप कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना कि अगर सफर पर जा रहे हैं तो जितना आप सामान कम लेकर चलेंगे अपने साथ तो उतना ही सफर आसान होगा, बढ़िया होगा। तो लाइफ में ऐसी ही है, हमारी लाइफ में जब हम स्ट्रेस कम लेके चलेंगे ना तो लाइफ उतनी ही आसान होगी और उतनी इंजॉयबल होगी। लाइफ में यूं ही अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। वन ऑफ द अमेजिंग ट्रैक, शायद म्यूजिक भी माइंड को डिटॉक्स करता है। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन। और अल्फा जैन में आज बात कर रहे हैं, जी हाँ, बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें। और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और थैंक गॉड फ्राइडे के अंतर्गत हमने बात की आज, अगर आप मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मूवी भी देखने जा सकते हैं, और अगर घर पर रहकर अपनी मेंटल पीस को थोड़ा सा रिज्यूनिएट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को जनरलाइज करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, माइंड को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसने रोका है। और हमने आपको बात की कि बॉडी के साथ माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ जिंदगी में सोचना है, तो टेंशन को जितना हो सके पेंशन लेने भेज दीजिए और माइंड को रिलैक्स रखिए। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा और इस वीकेंड को और कलरफुल बनाइएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है एक चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके संभव रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के

0: प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़े युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गायून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yozgar Yojana in New Delhi. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, of whom nearly 30% are women. The scheme is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Now, we take you live to Prime Minister's address.
2: और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है।
3: Earlier, before the dispersal of incentives, the Prime Minister interacted with some of the youth at Vigyan Bhavan. Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment Dr. Mansukh Mandaviya said that Modi government has implemented the four important labour codes for the welfare and interest of the workers. Defence Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defence production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. He said that defence exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defence equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of a state-of-the-art 10,000-ton aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19, 1D and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. The Border Security Force BSF today apprehended a person from Amritsar border with Pakistan along with one AK-47 rifle, 25 pistols, 368 live cartridges and a bulletproof jacket. BSF conducted the operation in coordination with the Punjab police near the Indo-Pak international border in Punjab. Israel's military carried out overnight airstrikes across southern Lebanon. Lebanese media reported that at least 18 people were killed in the strikes. The Israeli military said the attacks were launched in response to alleged Hezbollah violations over the ceasefire agreement. The strikes came after Hezbollah drone attack killed an IDF tank battalion commander and three other Israeli soldiers. Hezbollah also reported intense fighting in the area, raising concerns over the fragile agreement between Iran and the United States aimed at ending their conflict. Benchmark domestic equity indices ended lower today, snapping a 5-day rising streak. The Sensex shed 607 points to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points to settle at 24,013. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's singles semi-finals of the Macau Open in China today. She will next face South Korea's Park Jae-yeon in the semi-finals tomorrow. Today is National Reading Day. It is celebrated annually on this day to honour the birth anniversary of Puthuvail Narayan Panikkar, the father of the library movement in Kerala. Started as a Reading Day observance on June 19, 1996 by the government of Kerala in association with the P.N. Panikkar Foundation, the initiative evolved into a mass movement. And that is the end of this news bulletin.
4: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়া ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহার্টজ আর ডিএনএ ফ্রিকুয়েন্সির 1026 কিলোহার্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীর প্রায়োগিক প্রযোগে সম্প্রীতি বায়ানর কথিকা সুন্দরের পূজারী কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা এক সংগ্রামী সত্তা পাঠ করেছে মরমী দেবীয়ে।
5: সুন্দরের পূজারী কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা এক সংগ্রামী সত্তা অসম মাতৃৰ কোলা শুৱনি কৰি কৃষ্টিৰ পথাৰত সৃষ্টিৰ বীজ সিঁচি স্বগুণেৰে বিভূষিত হোৱা অন্যতম এগৰাকী পুৰোধা ব্যক্তি হ'ল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। কুৰি শতিকাৰ সোণৰ শিকলি ৰূপৰ শিকলিৰ মোহ ত্যাগী জনজীৱনৰ হাঁহি কান্দোনৰ দুখ কষ্টৰ জীৱনপাত কৰা অকপট গণশিল্পী অসম মাতৃৰ বীৰসন্তানজনী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল একেধাৰে সুনিপুণ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ, গায়ক, নৃত্যবিদ, অভিনেতা আৰু মুক্তিযুঁজাৰু। 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীত বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোপাল চন্দ্ৰ ৰাভা আৰু মাতৃৰ নাম গেথিবালা ৰাভা। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ঢাকাৰ সেনা বিভাগৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল, কিন্তু হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰাৰ আগেয়ে পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাত বিষ্ণু ৰাভা তেজপুৰত সম্বন্ধীয় লোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ লয়। তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই 1926 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে সেই সময়ৰ অবিভক্ত দৰং জিলাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰাত কুইন এম্প্ৰেছ পদকেৰে সন্মানিত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে কলিকতাৰ ছেণ্ট পল কলেজত নামভৰ্তি কৰে। ছেণ্ট পল কলেজৰ পৰা 1928 চনত প্ৰথম বিভাগত ISC পাছ কৰে। একে সময়তে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সহযোগ কৰাৰ অপৰাধত তেওঁক ছেণ্ট পল কলেজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয়। পাছত ৰিপন কলেজত পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত স্নাতক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলেজৰ ছাত্ৰাবাসত পুলিচৰ নিৰ্যাতন আৰম্ভ হোৱাত ৰাভাদেৱে কোচবিহাৰৰ ভিক্টৰিয়া কলেজত বৰ্তমানৰ আচাৰ্য ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ হিল কলেজত নাম লগায়। পঢ়ি থকা কালত তেওঁ RCPI বা ভাৰতৰ বিপ্লৱী সাম্যবাদী দলত যোগ দিয়ে। এনেদৰে স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিয়াৰ অপৰাধত কলেজ কৰ্তৃপক্ষই বাধ্যতামূলক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়াত ৰংপুৰ কাৰ্মাইকেল কলেজৰ পৰা কলা বিভাগৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিকত নামভৰ্তি কৰে। ৰংপুৰ কলেজত পঢ়ি থকা কালতে ৰাভাদেৱে মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত বাঁহী আলোচনীৰ চিত্ৰলেখা বিভাগটো পৰিচালনা কৰিছিল আৰু আবাহন আলোচনীত প্ৰবন্ধ পাতি লিখা মেলা কৰিছিল। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত আবাহন আলোচনীত প্ৰকাশিত সংগীত আৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ গায়ন নামৰ প্ৰবন্ধটো এটা সময়ত বৌদ্ধিক সমাজত বহু জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। 1935 চনৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী কথাছবিত নৃত্য পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাভাদেৱে সহযোগ কৰিছিল। 1939 চনত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে বাৰাণসীত তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা ৰাভাদেৱক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৎকালীন উপাচাৰ্য ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ কলাবিদ হিচাপে সোণৰ পদকেৰে সন্মানিত কৰিছিল আৰু কলাগুৰু উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। বৈপ্লৱিক তথা সংগ্ৰামী সত্তাৰ অস্তিত্ব কঢ়িয়াই ফুৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত আছিল। তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সৃষ্টিৰাজিয়ে তেওঁক আজিও অসমীয়াৰ মাজত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে জিলিকাই ৰাখিছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক আৰু সুন্দৰ পূজাৰী। তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে নাট, গীত, কবিতা আদিত তেওঁৰ বৈপ্লৱী সত্তাৰ প্ৰকাশ, নৱচিন্তা আৰু দৰ্শনৰ উন্মেষ ঘটিছে। ৰাভাদেৱে গীত, নাট, কাব্য ৰচনা কৰাৰ লগতে গল্প, উপন্যাস আৰু অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰবন্ধ পুথি ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ বৃহত্তৰ অসমৰ পৰিকল্পনা নামৰ এলানি প্ৰবন্ধ বাঁহী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰবন্ধ পুথি কেইখন হ'ল অসমীয়া কৃষ্টিৰ চমু আভাস, অতীত অসম, মুক্তিদেউল, ন পৃথিৱীৰ নতুন যুগ, বড়ো জাতিৰ ইতিহাস, ৰাভা জাতিৰ ইতিবৃত্ত, বুৱতী সুতি, অসমীয়া কৃষ্টি, জনজাতীয় সংস্কৃতিত শিৱ, আলি আই লিগাং, ডিমাচা কছাৰীৰ বুৰঞ্জী, বাণী কেবাং আদি। সোণপাহী, মিচিং কনেং, জীৱন লালসা হ'ল তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত উপন্যাস। মামীৰ হাৰ, কুৰি বছৰ জেইল, জালকেছ, হিয়াৰ পুং, বড়ো ভাষাত রচিত ফুংকা আদি তেওঁৰ দ্বাৰা রচিত গল্প। বিষ্ণুপ্রসাদ ৰাভাদেৱে রচনা কৰা নাটকখন হল গেঙনি ৰেঙনি। ইয়াৰ উপৰি মুঠ 137টা গীত রচনা কৰি অসমৰ সংগীত জগতলৈ আগবঢ়োৱা ৰাভাদেৱৰ অবদান অসমৰ ৰাইজৰ অন্তৰত প্ৰবাহিত হৈ আছে। তেওঁৰ প্ৰতিটো গীতে শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গীতসমূহত প্ৰেম, প্ৰকৃতি,

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में

0: किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
1: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से

0: समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओवादी तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है, और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और

0: तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
1: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150

0: देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट में जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
0: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं भारतीय प्रवासी जो हैं उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
3: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country.
10: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
11: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
9: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
11: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
9: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Gold Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matru Shakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rai Rangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, Right to Life and Liberty. The Apex Court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity by taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
12: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
9: Mr. Singh said India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain integral and inalienable part of India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is accessible to remotest corner of the nation. He said Indian passport is treated with respect and with confidence internationally.
13: As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect and with confidence internationally. Our responsibility is to ensure that the process of obtaining this document remains a matter of right, not as a struggle.
9: Peace talks between the US and Iran were called off today after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials did not travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. U.S. Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior U.S. official said negotiators for the U.S. and Qatar worked out the deal with the help from Iran. A report from our correspondent.
14: The ceasefire is being seen as an important step towards easing tensions across West Asia. The truce was secured after urgent efforts by United States, Qatar and Iran, following a sharp rise in fighting between Israel and Hezbollah that raised fear of a wider conflict. The ceasefire also supports ongoing diplomatic efforts between Washington and Tehran aimed at reducing regional tensions and ensuring smooth flow of trade through shipping routes. However, major challenges remain. Israeli forces continue to hold position in parts of southern Lebanon, while Hezbollah has insisted that Israel must fully withdraw. More talks are expected to be in the coming days if the ceasefire holds. But the situation remains fragile and any fresh confrontation could quickly undermine the latest peace efforts. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
9: Back home, India has undergone the remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Modi in the last 12 years. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to transform the Northeast. A report.
15: When it comes to nation building, leaving the Northeast neglected is impossible in New India. This region was once identified only by violence, blockades and neglect. But Prime Minister Narendra Modi's government changed this. Over the past 12 years, the Prime Minister himself has visited the Northeast more than 83 times. Connectivity of remote and hilly regions with the national mainstream has increased in this period. This has resulted in increased tourism and created greater local income opportunities. Over 47,270 crore rupees have been spent under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and more than 46,290 kilometers of rural roads have been constructed. 8 new greenfield airports have been developed over the past 12 years. There were 9 such airports in 2014, and the number has now increased to 17. Under the Uran scheme, 90 routes and 12 airports and heliports have been operationalized. Over 4,170 kilometers of railway lines were electrified in the Northeastern region. 100% railway electrification has been achieved in Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Mizoram. For the first time since independence, the first freight train reached Manipur in 2022 and the first freight train reached Meghalaya in 2023. The first train reached Mizoram in 2025. Talking to Akashvani News, Principal of Itanagar's Dera Natung Government College, Dr. M.Q. Khan said that air connectivity has improved in Arunachal Pradesh.
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी.
16: Before 2014, there was no air connectivity. But now, air connectivity has been established and people are able to reach Delhi from Itanagar in 2.5 to 3 hours. Road connectivity, which was previously inadequate or limited to single lane roads, has now been upgraded to 4-lane highways.
6: अभी 4-laning हो गई है.
15: Meanwhile, a total of 6,600 crore rupees has been allocated under PM Divine scheme, accelerating the development of the Northeast. Talking to Akashvani News, a Guwahati local said that road and air connectivity have improved in the region.
7: Modi government ka ye 10 saal bahut acha se paar hua hai.
17: The 10 years of Modi government have passed very well and the condition of roads has improved significantly. Now we can travel long distances much more quickly and connectivity to villages has also improved. Therefore, we are very happy.
15: Today, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, Ashtalakshmi, the 8 states of the Northeast, are writing a new story of development. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
9: The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. On to sports. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's singles semi-finals in the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun 21-16, 21-18 in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Hae-un in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-in in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: अतिथि पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ